राग गौड़ी पूर्वी विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे मध्यम ते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा शाम का पहला पैर है। इस राग विच कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई शब्द का गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।

हर मूर्ख प्रति इस तरह बयान करते हैं, अमली अमल ना अंबड़े, मच्छी नीर ना होए, जिस तरह अमली

अपने सह दे नाल, अपने प्रभु दे नाल रथे गए पाव जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया, वो सारियां नूं चंगे लगदे ने। क्यों? जो हर का प्यारा

साहिब सफलियो रुखड़ा अमृत जांका नाम जिस तरह कोई कणा दरखत होवे छां वाला फलां वाला आंदे जांदे राही दे उहदे थले बैठ के आनंद माणदे हन उड़दे हुए पंछी भी उस दरख्त ते आके बैठते क्योंकि सुख मिलता है ते जड़ा साहिब है प्रभु है ए भी एक रुख है पर केड़ा अमृत इस दरख्त का नाम है भाव जिस तरह फलां वाले दरख्त ते पंछी आके बैठते ने सुख माणते ने इसे तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ओ प्रभु दा नाम जप के अमृत रूपी नाम जप के अपना जीवन सवार लेंदे।

वही वस है अभियानार शब्द जदों आप सुनी ओदे एक एक पंक्ति वाल ध्यान देइए ओदी विचार हिरदे विच वसाइए ता मन जेड़ा है ओ फिर पटकेगा नहीं। हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है क्योंकि परमेश्वर सारे दे नाल वसदा है ओदी निगाह तों

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हों विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उत्थों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोगों नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

और जिन्हां ने इस प्यार नूं जान लिया उन्हां दा जीवन दुनिया दे राग रंगा तों उत्ते हो जांदा है। क्योंकि साहिब जी बयान करदे हन जिन्हां ने नाम दा रस पीता उन्हां नूं दुनिया दे झूठे रसां दा फिर मुहताज नहीं होना पैंदा। आओ विचार करिए जो इस शब्द की भावना है, जो इस शब्द विच प्यार है, उस प्यार वल आपा अपना मन जोड़ी रखने और विचार करिए कि जिन्हां ने प्यार किया उन्हां दे मन दी तड़प किस तरह दूर होती है और किस तरह उन्हां नूं

जंगल वाले तो रुपए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गान लग पे। अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए, जो रते सह अपने तिन पावे सब होए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार कर दे, अमल तो बगैर जी नहीं सकदा, मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकती, असि भी तेरे नाल इस तरह

निर्माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद में मंजी से लंबे पे। एक पासे मेहता कालू जी भरा पे देखते और एक पासे भाई अजय राम और एक पासे राय पोई की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पे ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी में मनावांगे। सूर्य डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदे होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े हो पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदे आ धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी दे कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ए चोला पा लै आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रखदी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते घुमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लें मैं फिर मिलांगी।

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो। बड़ी वैराग विच है धन गुरु नानक साहब, माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तो थले उतरे, भज के आए चरणा ते मत्था टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया। कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मत्था टेकन ते नहीं हो सकता। सत्संग ए इतिहास ये कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है ताकि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा? चंगा इंसान बनने वास्ते

दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नू स्वर्ग बना सचखंड बना। एक कथा कहानियां सुननियां हैं अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नू प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखे, साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नू प्यार देंगे, लोकां नू प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

ता तेरा जीवन अधूरा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं, बिन संगत ऐसे समझो जैसे पशु तो

ये पल दी खबर नहीं, अहंकार कर रहे हैं। इसे लिए हजूर कह दें, तन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा। पता नहीं अगला पल किहो जिहा आ रहा है। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए एक नगर दे बाहर जा बैठे, वेख्या के सारे लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, ते झट बाद वेख्या के रोना पिटना पै गया है। इत्थे मर्दानिया आ हुणे तां खुशियां मना रहे सन, ते हुण वैन पै रहे हन जाके पता करके आ। मर्दाना जदों गया पता करके आया तां आख्या, गरीब नवाज सच्चे पातशाह एक शेठ दे घर लड़का होया सी। बड़ी मुद्दत दे बाद औलाद होण दे कारण सारा नगर बड़ियां खुशियां मना रहा सी, पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत नाल ए लड़का शरीर छड गया है, ते उहदे विंजोग विच हुण रो रहे हन। मर्दानिया ए संसार है ही दुख सुख दा एक नगर है, इत्थे पता नहीं लगदा। जिस तरह समुंदर विच बेड़ा जा रहा है, पता नहीं किथे तूफान आ जाना है, किथे शलां उठ पैनिया हन, किथे शांत हो जाना है। ए साडा जीवन भी ऐसा है, पर प्यारी साध संगत जो गुरु की बाणी सानू बख्शिश कर दी है कि भाई राज भाग दुनिया दे धन दौलत विच सुख नहीं हन, सुख तां हरि दे सिमरन विच है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जिन्हां हरि दा सिमरन कीता सुखी तां ओ हन। कितने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह संसार तों चले गए हन, ते भाई नाम किन्हां दा रह गया जिन्हां ने हरि सिमरन कीता। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन कि इस धरती ते इतने राजे महाराजे वजीर हो चुके हन, जदों असी एक कदम रखदे हां तां एक राजे दे सिर ते दूसरा वजीर दे सिर ते रखदे हां। इतने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह हो चुके हन, पर अज नाम किन्हां दा अमर है जिन्हां ने जपिया है श्री वाहिगुरु। तो इसलिए हजूर कहंदे हन, भाई पता नहीं अगला पल किहो जिहा आवेगा, इसलिए जप जप के इना श्वासा नूं सफल कर लै। तेरा संसार ते आउना भी ते संसार तो जाना भी धनता दे।

सज्जन कर दिता है। तू किन्या नू तारिया है गिनती नहीं कीती जा सकती, तू किड्या ते बख्शिश

मरदानी दी घरवाली मरदानी नू की आख रही है। स्वामी तुसी रोज गुरु नानक दे नाल जांदे हो ते गुरु नानक बाबा अपने घर कदी भी नहीं आए। एक उलांभा दे

मैनू लगदा है आपा गरीब लोग हां ते गुरु नानक अपने घर तां नहीं दे आंदे। मैनू लगदा है आपा नीवी जात दे हां ते गुरु नानक अपने घर तां नहीं दे आंदे। सतसंगियो मरदानी ने सुनिया ते कन्ना विच उंगलां दे लईयां, पलिए ऐ की बोल रही हां, मेरा गुरु नानक गरीब नवाज है। आ चंद्रमा देखदी है सारे संसार नू रोशनी देंदा है, इस चंद्रमे ने कदी नहीं ए देखिया भी ए घर चोर दा है, इथे घट रोशनी देवां, ए घर सार दा है इथे बद रोशनी देवां। बेशक कोई घर चोर दा होवे कोई साध दा होवे, ए चंद्रमा सारिया नू रोशनी देंदा है। किसी तरह मेरा गुरु नानक है, सारिया ते रहमत करदा है, सब नू गले नाल ला लेंदा है। अगों घर वाली आखन लगी, स्वामी ऐ ते ठीक है, ए चंद्रमा सारे संसार नू रोशनी देंदा है, पर ए चंद्रमा कदी किसे दे बेड़े थोड़ी उतरिया है, कदी किसे दे बेड़े थोड़ी उतरिया है ए चंद्रमा। मैं ते तां जान दी जे तन गुरु नानक पातशाह साडे वर्गे गरीबां दे घर आके भी भोजन छक जांदे। सच जाणो मरदानी दे अखां विचों हंझू किराए, उठ के तुर पए, हुणे जांदा हां गुरु नानक नूं घरों बुला के लियांदा, ते तू मेरे आण तक प्रशादा तैयार करके रखी। मन दे विच बैरा

दासी नू आखिया जा गुरु नानक नू उठाल ते प्रशादा छक लवे। अज दासी गुरु नानक नू उठालन वास्ते अंदर गई है। मन दे विच की आया मना बाबे नानक दी चरण तूड़ी नू बड़े बड़े राजे लोचदे ने। तेनू अज मौका मिलिया है ते पढ़ लै चोलियां। अपने दोनों ही हाथ बाबे नानक दे चरणा नू तलियां नू लाए ते अपने मथे ते ला ले। ज्यों ही बाबे नानक दे चरणा दी तूड़ी मथे ते लाए की बख्शां होईयां इस दासी नू लोक परलोक।

कुछ ऐसा परमात्मा है सच्चिदानंद शुद्ध उस अंतर्यामी परमात्मा ने सब वेद ग्रंथ कथन कर दिया और जिन्हें उपता ऋषि मुनि उन्हें कथन कर दिया कि उस परमात्मा की प्राप्ति करो। वो परमात्मा कैसा है, वो कैसा परमात्मा देखो गुरु नानक देव महाराज का ध्यान। सारे पे पहला एक आ सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी से पहला एक आज साहब से पहला एक आ एक की मतलब है एक परमात्मा। आ सारा सारी दुनिया के आकार नाम दे स्वरूप है, नाम ओंकार का स्वरूप है, ओंकार एक स्वरूप है, सारा प्रपंच एक स्वरूप है, एक सारा प्रपंच निकलता एक रूप है, एक सारा प्रपंच मिलता। जैसे वेखो एक दो एक बना लो तो तेरी दो होगा, ते तीन एक होगा तीन होगा, चार एक बनाओ चार होगा, भी एक भी सौ एक सौ हो गया, दो हजार एक दो हजार हो गया। देखो जिन्ने एक उन्ने उन्ने गां हिंसे हो जाएंगे, पर वो जिन्ने हिंसे है पजा हिंसे है या सौ हिंसा हैगा वो एक ते बिना है, एक ते बिना कोई हिंसा हैगा, एक ही सारे हिंसा का रूप है। जिन्ने हिंसे एक का रूप है, एक हिंसा का रूप है, जिदा जल तरंग का रूप है, तरंग जल का रूप है, सोना भूषण का रूप है, भूषण सोने का रूप है, मृत का घट का रूप है, घट मृत का रूप है, सारा प्रपंच एक का रूप, एक परमात्मा का रूप है, एक का रूप है, एक संसार का रूप है। इसके बीच में खुद दशमेश पिता जी उपासना गुरु साहब आनंद प्रसाद के बीच में दस दे हैं। जैसे एक आग थे कनूका को तो आगे उठे न्यारे अनारे हुए कि फिर आग में मिलाएंगे, जैसे एक तूर थे अनेक तूर पूर्त है, तूर के कनूका सब तूर ही समाएंगे, जैसे एक नर से तरंग का कोट उपजित है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे, तैसे भी स्वरूप थे भूत भूत प्रगट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। दसवें महाराज सिखा दस दे पाई उस एक सारा ब्रह्मांड पैदा होंदा, एक रूप है, एक नाले मिलता, एक नाम किसका है ब्रह्म का। क्यों गोरख से सिद्धा ने गुरु नानक देव महाराज ने पूछा आपका क्या मत है, आपका कौन सा रास्ता है, आप की उपदेश कर दे है। महाराज कहते एक परमेश्वर की पूजा करनी, एक अकाल पुरुष नु मनना जेरा सब का अधिष्ठान है, जेरा सब का आसरा है, जेरा चक्कर चेहनर बन जा दल पात नहीं जे रूप रंग को कहना सख्त ऐसा जो परमात्मा है, बरनो चेनो बारा नानी का पाश अधिक से सहारा, ये अखर खर जाएंगे वो अखर में नहीं, ऐसा जो अद्वैत परमात्मा है जिसके बीच में सुजाति विजाति सुगत पेर नहीं है, जिसके बीच में देश काल वस्तु परिशेर नहीं है, जेरा नाम रूप से रहता है, जेरा थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए, ऐसा जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति इस जीव नू करोने वास्ते साडा अवतार हैगा। असि उस परमेश्वर का उपदेश करते हैं और किसी वस्तु का असि संसार के विच में उपदेश नहीं करते हैं। जेरा निरपौ ते निर्वैर है, निरपौ ते निर्वैर ये दो विशेषण वो इत कटते हैं। ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है, जेरा एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपौ निर्वैर परमात्मा का स्वरूप लक्षण है, इसका असली स्वरूप ही समझ लेना इसे वक्र नहीं आ गया। इस करके इसका जाप करने से तू तू करता तू हुआ, मुझे मैं रहा न हूं, जब आपका पद का मिट गया जब देखा तब। सो जिन्हें अवतार ऋषि मुनि है दसे गुरु है दरबार साहब की वाणी है वेद है ग्रंथ है ते विशिष्ट आदि ऋषि मुनि है कबीर नाम दे भगत है, ये सारे परमात्मा के प्रसंग गाँव है, परमेश्वर कथन करते हैं भाई तुसी उस परमेश्वर की प्राप्ति करो।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा हो। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जाती है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल विवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जाता। पग किहोजी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि इहनूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा, चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलण दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ता उही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाए।

परम सत्कार कुशासन। सतगुरु जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दी सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लैके आ गए, डाक्टर कोल गए, डाक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै इस नू खा आराम आ जाएगा। डाक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा बंदा ए आखे कि कोई फर्क नहीं पिया। डाक्टर कोल भी गया, डाक्टर ने दवाई भी दिती पर आराम कोई नहीं आया। हुण पुछे ए दवाई ते खाधी नहीं, आराम कित्थों आवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। गुरु घर ते आए, अरदास भी कीती, करवाई भी, लेकिन उपदेश ते मन विच वसाया ही कोई नहीं, ती असर किवें होवेगा? आखो सतनाम श्री वाहे। बाणी नाल ते मन जोड़िया ही नहीं ते दुख किवें दूर होवे? दवाई खाधे बगैर आराम नहीं, खावांगे ते आराम आवेगा, ते जे बाणी मन विच वसेगी ते ताही दुखां दा नाश होवेगा। इधर अरदास कीती ते नाल ही सोचिया बस हुण सब कुछ मिल जाए, ये सोच बड़ी माड़ी है। अरदास गुरु सुनदा है,

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है पर किस तरह आठ पहर आराधी अठे पहर उदी आराधना करिए उदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नाश होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना दवाई ते दित्ती है ए ना होवे कि दो खुराकां खा के ते फिर छड़ देवे कि थोड़ा जिहा आराम ते आ गया है हुण दवाई दी की लोड़ है। दवाई खाई जानी है जदू तक पूरी तरह आराम नहीं आता। एक बार करो रसना पवित्र प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाह। अज वो पवित्र दिहाड़ा जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक बारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए जिन्हां नूं देखण दे नाल ही

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

जन ते मुक्त भय चरण बदक। हे प्रभु तेरे पैरां विच तीर मारन वाला ओ शिकारी भी तर गया, गनका भी तर गई, कुबजा मालन भी तर गई, मेरे ते भी नजरे अनायत कर। चरण बदक जन ते मुक्त भय हों बल बल जिन राम कहे दासी सुत जन।

भाई साहब ने अगली गल बड़ी कमाल दी कही है। कहंदे ने हार चले जेड़े भगतां नाल ईरखा करदे ने, भगतां नाल द्वैत करदे ने। भाई साहब कहंदे ने मालिक उन्हां दा

दुनिया दे सारे राजे आज झूठे राजे हैं, लेकिन तू तू सच्चा पातशाह है। सात संगत बोलो श्री नासरो मंसूर।

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के जांदा है। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेज नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतरजामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालिक है, संसार

तेरे जैसा संसार ते और कोई शहंशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है और तू शूरवीर भी है। भगत एडा है कि जब आनंदपुर का किला उजड़ गया, पीछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुने, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया तां सानू कीर्तन सुनाओ, सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा दा भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दियो सारे हन, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं, सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख के चरणों में शीस चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए ने कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे बोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, ओ गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हन? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जांदे। दया सिंह तू भी शहीद हो जांदा, मैं भी शहीद हो जांदा, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हन, उसकी जड़ी भगती कीती है, असी ए सौदा सस्ता कीता है। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या, दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नूं शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं, आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी, हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सत संगत बोलो श्री। आख्या और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मनां दी फौजा घेरां पा के खड़ोतियां होईयां, ते अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ते दुश्मनां दे कई दलां दे दल नूं मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। ओ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ।

धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे पवित्र बाणी नाल सी, अपने पिता धन गुरु रामदास महाराज नाल सी, अते खास करके साध संगत नाल प्रीत सी। साध संगत दा आख्या नहीं मोड़िया, अपने शरीर दी शहीदी दे दिती। मैं शब्द पढ़ रहा सी, आप तरिया जिनी डिठा तिना लय छड़ाए, ओ धरती हरियावली है जिथे सतगुरु जाके बैठे ने। असी अज उस लाहौर दी हवेली नूं भी मत्था टेकदे हां, उस पट्ठी नूं भी मत्था टेकदे हां, उस तवी नूं भी मत्था टेकदे हां, उस देग नूं भी मत्था टेकदे हां। ते तन है ओ रावी, जिस रावी दे कंढे ते जिस रावी दे किनारे ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इशनान कीता अते जोत विच जोत मिला दित्ती। आओ ए पंक्ति पढ़िए ते उस तो बाद समाप्त होई।

तन ते छिटकी अपनी धारी प्रभ की आग्या लगी प्यारी जो किस करे सो मन मेरे मीठा ता अचरज नैनो डीठा। जब ऐसी दशा सी ना एक महापुरुष कहिंदे उदो अकाल पुरख ने दर्शन दिते महाराज ने कहिंदे गोबिंद सिंह बेटा क्योंकि आप मैं अपना सुत तोहे निवाजा पुत्र बना के जो भेजा सी जी कहिंदे बेटा गोबिंद सिंह तू इम्तिहाना विचों पास हो गया है प्यार ना आखो सतनाम सिंह मैं प्रसन्न हां मैं खुश हां ते कुछ मंग लै आनंदपुर चाहिए ना जी पुत्र चाहिए कुछ नहीं चाहिए ते की चाहिए ते साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अकाल पुरख नूं कहिंदे ने जे त्रुठे हो मेरां दे घर विच आए हो जे बख्शां दे घर विच आए हो ना तां ए चीज दिओ जी